निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले हाय हाय निर्धन को पल्ले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघ दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लहज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

नौकरी तो जाए ही जाए पर अंग्रेज का राज है पता नहीं दंड की मिलेगा सजा की मिलेगी। ते जलो अगे गए तो अफसर बैठा होया सी उठ खड़ोता अपनी कुर्सी तो दस्त पंजा लिया ते कहन लगा करम सिंह मैं सारी रात सारियां नू चेक कीता है पर जो ड्यूटी तू दिती है वो होर किसे नहीं दिती। उच्चारण करो श्री सात संगत जी कम से कम अगे बैठे हुए दी बिरती जरूर जोड़नी चाहिए है। समाधियां ला लो ये गर्मी तुहानू लगेगी नहीं जदों अमृत ठंडा पवेगा ना इसदे विच बस जुड़ जाओ गुरु के चरणों में। उच्चारण करो श्री एक दो मिनटा में मैं आप नू बाणी दा प्रताप दसना ए ओ महापुरुष जिन्हां दी थां ते आप कलगीधर पातशाह जी ने सारी रात ड्यूटी दिती। राजा जदों पहुंचिया महापुरखां ने आख्या जल पानी छका के संगत च ही लै चलो। महापुरख संगत विच आप भी पहुंच गए समाप्ति होई कीर्तन दी ते सुख शांत पुछण लगे ता राजा रो पिया महाराज कोई निरंकार ने राज भाग दुनिया दे सुख बख्शिश कीते सी पर नाल दुख भी बड़ा वड्डा ला दिता पगंदर दा फोड़ा निकला है ते आप कृपा करो। ता महापुरखा ने हाथ कीता गुरु ग्रंथ साहब वाल ओ भले पुरछा ठीक ता उन्हें करना शरब रोग का छारे जपो शरब रोग का अवखद साडा बच्चा बीमार होवे किवें डाक्टर वाल अखां जुड़ जांदियां कोई मुकदमा पै जावे चंगे तो चंगे वकील वाल ध्यान जांदा पर ओ तंता दे योग हन जिन्हां दे हाथ जुड़ जांदे हन गुरु ग्रंथ साहब अगे। महाराज तू कृपा कर। महापुरख कहन लगे राजन बाणी दे विच सारे ही अमृत हन विच बाणी अमृत ते पांच पाठ जप जी साहब दे रोज करेगा कह लगा महाराज मैं जरूर करांगा क्योंकि मौत सामने दिखाई दे रही है। महापुरखा ने कहा भाई जल विच खलो जावी अमृत वेले ते पांच पाठ जप जी साहब दे करनियां नूं उतना चिर उस फोड़े ते जल मलदा नहीं गुरु कृपा करेगा। प्यारी सात संगत जी महापुरखां दा वचन मनना क्योंकि गल तो वचन मनन नाल है ना। अमृत वेले उठ के राजे ने जो नितनेम आरंभ किया 40 दिनां दे अंदर अंदर पता ही नहीं लग्या फोड़ा कदे निकलिया भी सी के नहीं निकलिया। उच्चारण करो श्री तिस साहेब की टेक सारे जपो टेक गुरु के सिख नूं बाणी दी है सिख ता साहब है धन गुरु ग्रंथ साहब एक बार प्यार नाल आखो धन गुरु ग्रंथ साहब ते फिर क्यों ना भाई दुख

कोई असमेध यज्ञ करे, अपने बराबर तोल के, अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे, कोई प्राग दा इशनान कर लवे, पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते। जप सतनाम।

शास्त्र स्मृति पेखे सर्व टटोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म तर्म किरिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार किए वो जतना, पुन दान हो में बो रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्तने में करे बो पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सुर थीवे। अगन माहे होमत पुराण, कनक असव हैवर भूम दान। न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर सिर कटावे, तो पी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छूटे, गर्व गुमान न मनते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को वो साधना करे, मन ते कबू न बिख्या टरे। जल तो वह बोधे अनीत, शुद्ध कहा होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उतरे पतत बहुमूच। बहुत स्यानप जमका पौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै। एक अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दरगे नहीं सीजे। छूट स नाही उब प्याल, मोबे आपे माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए। चार पदार्थ जे को मागे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं छोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सू गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन समदिष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाव तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुमते हुए, नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम में उद्दम फला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने, कहंदे ने दोस्ती करनी है

परमेश्वर, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसाहा दिसा, जिस पास बैठिया सोईए सबना दा विसा, जिद कुल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे, सच्चे कुल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे। इस करके दोस्ती करनी है, कच्चे दी ना करो, पक्के दी करो ते सच्चे दी करो, ताकि आप भी सच्चे

पैदल कूदे घर चले गए। बुआ खड़काया, पैदल कूजी ने बुआ खोलिया। चेले कहन लगे पाई तिलकू,

जोगी कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रशादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया भाई तिलकू जी ने बुआ खोलिया।

जोगी जेड़ा सी कहन लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा जेदे चरना दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरना दे नाल तू मन जोड़े है।

इस जोगी ने पाए दिल को दिनाल पाई, पाए दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया। हुण पाए दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाए दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्होंने।

नानक तिन सिउ क्या कीजै दोस्ती, जे आप भुलाए करतार। उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओहदे नाल करो जिहड़ा

ने दोस्ती उथे करो जिथे निभा सको ते निभ सके दोस्ती ओदे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे ए ठीक है कि भला करो जरूर पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे तां उथे भला करो जिथों

बदली हो गया। जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी, बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने,

40-45 साल का गभरू नौजवान गुरु मेरी उम्र 100 साल तो उत्ते रिधियां सिधियां दा मैं मालिक नौजवान गुरु जाके मथा टेकांगा ए नहीं हो सकता मैं वापस चलिया नाल आए लोगों ने समझाया अज तू अगे आ गए दर्शन करके जा दिल करेगा मथा टेकी दिल करेगा ना टेकी तेनू केड़ा किसी ने धक्के नाल फड़ के मथा टिकाना लोगों ने समझाया ताए जोगी फिर तुरिया ये अमृतसर दे लागे पहुंचे उधर तन गुरु अर्जन साहब अंतरयामी

वो सारी की सारी जोगी समेत तिलकु समेत कनाथ के परले पास बैठा दियो, दूसरे पास साडा आसन ला दियो। गढ़ शंकर तो जिन्ने भी लोग आ रहे ने कोई भी साडे मथे ना लगे, श्यामा ना सिखा ने ला दिता, विष्कार एक कनाथ ला दी। जिन्ने भी लोग गढ़ शंकर तो आए

इनाम दा बोल है जेड़े सिख ने प्यारे ने ओ गुरु दे बोल दे कोल आके बैंदे ने नाम दे बोल दे कोल ते गुरु दे गुणा दी विचार कर दे नाम दे नाल झोलियां भर दे उन्हां गुरसिखां

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलान कहन लगे बचन की कोई उम्मीद है तूफान।

लगदा भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है एनू चुके सुट दे जद सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोका ने मेनू चुक के जरूर सुट देना ओही गल हुई सारे मेरे दुआले हो गए पहला ते कहन लगे साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो बलि दियो संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे

आए न तेन निज कर वास है, जुग जुग शोभा होए जितने सुख संसार के, सब सेवा के बीच उत्तम पदवी पा गए, सेवा करके नीच ऐसी सतगुर की वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तिस आगे धरे, सहब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे परवान, सतगुर की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छे सोही फल पाए, साचा सहब कृपा करे, सो सेवक जमते

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

0: खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

सब कुछ स्थिर रह सके। ए धारना धार के हजूर ने सारिया संगतां नूं ए हुक्मनामे भेज दिते कि विसाखी ते भारी दीवान सजेगा जिस विच दूर नेड़े तो संगतां हुम हुम आके पहुंचन। 1699 दी विसाखी नेड़े आई तां एक दिन पहला ही आनंदपुर साहिब विच पंडाल संगतां नाल खचा खच भर गया। पंडाल दे एक पासे वल कुछ खास ढंग दा तख्त बनाया गया। तखत दे पिछले पासे दोहरे पर्दियां वाला तंबू सी जिसका बुहा उस थां खुलदा सी जिथे हजूर ने खलो के संगतां नूं दर्शन देने सन। संगतां दियां नजरां उधरे ही लगियां होईयां सन कि तंबू दा पर्दा हिलिया ते महाराज रवां रवी तख्त दे उत्ते आ खड़े हो गए। हजूर दे बाहर आउंदिया ही खुशी दे जयकारियां नाल पंडाल गूंज उठिया, पर महाराज दा अनोखा रूप वेख के चारे पासे चुप वरत गई। महाराज दे सज्जे हाथ विच श्री साहिब चमक रही सी अते हवा विच जरा जरा कंबदी तलवार वल वेख के हजारां दिल कंब रहे सन। अंत महाराज ने बड़ी गर्जवी आवाज विच कुछ कहा। ओ जोश परे बोल जो महाराज संगतां नूं कह रहे हन, उन्हां बोलां नूं अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दीआं बीबीआं दा ढाडी जथा आपदी सेवा विच है।

कुछ बोलो भी ना, कुछ कहो भी ना, कि परमात्मा सुन लेंदा है, परमात्मा जान लेंदा है। अनुभूत ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज कैसी मंग आई। परमात्मा ते ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे ते मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे ते मैं उसनु देवा। असी आने ही मंगण वास्ते, इस डर ते डिगने ही ता वा कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहिदी दे दे। सतगुरु एक खिन भी नहीं लांदा, सेवक चोली विच दात पा देंदे। किन्ना दी जिन्हां नूं यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी भरोसा करी इहदे ते।

0: मानुक अब माने प्रभु मेरा अंत जामी जान।
1: ओ प्रभु सब कुछ जान दे साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर।
0: जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना
1: ते आके गुरु अग्गी अरदास कर,
0: ओ गुरु भावनी पूरी कर दे वे।
1: खाली चोली नहीं भेजेगा पर देवेगा, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है
0: कि इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए।
1: जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हंसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आओ पछोकर त्यास पक्को जरा।
0: जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया
1: है। ऐसा दरबार कोई
0: सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे,
1: चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दे दरबार च आए।
0: जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकदा। आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नाल मंग कर ली
1: ते प्रभु कड़ा है
0: प्रभु मेरा अंत जामी जान। तू करता सब किछ जानदा,
1: गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए,
0: दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है।
1: आ की कही तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए,
0: मेनू की लोड़ीद, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसन की कोई जरूरत नहीं।

सका। परमात्मा तू ते जानना है कि मैं तेरे दर्शना तो बिना रह नहीं सकता, फिर देरी क्यों, विच पड़दा क्यों, विच दीवार क्यों, हे परमात्मा इसनु हटा दे, मैं इतना चिर सबर नहीं कर सकता, मैं ते जीवित रह नहीं सकता, मैनू जल्दी दर्शन दे दे, ऐसी कृपा मेरी ते कर दे। असी भी ऐसी ही बेनती करनी कि परमात्मा हर बिन रह ना सको एक राती, ऐसा जीवन बन दे एक नागा भी ना पवे, रोज गुरु दरबार विच आई। ताई हो सकता है जे मन अंदर ऐसी तड़प होवे, जे ऐसी लगन लगदा है कि परमात्मा जे तेरा गुरु दरबार नहीं ते कोई भी चीज नहीं, जे तेरे दर्शन हो गए ने ते सब कुछ सफल, ऐसा नियम बनाना है, ऐसा मन अंदर अकीदा करना है कि सतगुरु हर बिन रह ना सको इक राती, जो बिन अमल है अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। ऐसी सतगुरु साडे ते मेहर कर दे। साहबान च बना उपदेश दिता, एक कड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। परमात्मा एक रात ते किते रहेंगी जे एक कड़ी भी मैनू दर्शन ना ना होण ते मेरे लिए ते कलयुग सामने आके खड़ा हो जाए, मेरी हालत किहो जी हो जाती है। परमात्मा ये दर्शन मेरे को ना खो, मेरे ते दर्शन की कृपा करी रख। आओ असी बेनती करनी

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर आवे कम,
0: अमल कर कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ये अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ये तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवै, नाम रूपी रस प्राप्त कर, ओ अमल पी जिहड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे। सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम दा अमल करिया करदे सन जिहड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

कबू न चूए बिरथा परवासा लोक बिरथा परवासा लोक ठाकुर पाव तेरी टेक अवर छुटी सब आस अचिंत

सिमरन कैसा है? सब आंख देनी प्रभ के सिमरन कार्य पूरे ते मनुख चाहता है मेरे काम विच कदी विघन पवे ही ना, मेरे सामने कदी औकड़ आए ही ना, मैं कदी दुख दा सामना ना करा। ये साडे मन दी इच्छा है। ते साहब कहंदे ने जे तू ऐसी इच्छा रखने ना कि मैं दुखां दे विच ना पवां, एक कम कर, प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरा है, प्रभ कै सिमरन कबू ना चूर है। प्रभु दे सिमरन करन दे नाल सारे कार्ज पूरे हो जांदे, ते जिन्हां ने प्रभु दा सिमरन कीता उन्हां दे कार्ज पूरे होए ने। जिहड़े सिमरन विच लग गए ने, जिहड़े नाम जपदे ने सिमरन करदे ने,

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दियां गल्लां करदे ते बच्चे कठे होके सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दियां गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। ते जिस वेले रात पैनी, सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तां मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तों दूर होवां ते ना ए बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे, कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तों भाव सतगुरु ने केवल ए बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार दा कोई पेन पेट नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखीए।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी, पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी। साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे। कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वो दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है, वो जोत प्रगट किवें होवेगी। साहब कहिंदे ने जात ना पुछ जोत दी पहचान कर, ते जोत दी पहचान ता हो सकती है आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबा ने बाणी विच के

ही परमात्मा। मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहिदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंडता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करन आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने कानपुर कोलों बर्दाश्त